धन्यवाद देवी राधा रानी के चरण लाला धन्यवाद धन्यवाद चलिए अंदर आओ

0: लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे सोने की राम कसम लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी आओ
1: राधा के रूप में आते हुए लाजना आई मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ले हंसू नहीं हंसू नहीं

0: जो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है।
1: पंडाला की ये बेटी नहीं, मैं गांव की बेटी, अब मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। वक्त लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा, मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा।